जो लोग काफिर हुए और कुफ्र ही की हालत में मर गए, वो अगर नजात हासिल करनी चाहें और बदले में जमीन भरकर सोना दें तो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। उन लोगों को दुख देने वाला अजाब होगा और उनकी कोई मदद नहीं करेगा। सौदा

0: की ताजगी का सफर तय कीजिए। यूसीपी की दुनिया के साथ, तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6.

0: ये लोग आपको नहीं झुटलाते बल्कि ये जालिम अल्लाह की आयतों से इनकार करते हैं। इस वाकये की तफसील गुजर चुकी है कि एक रोज कुफार ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को 3 बार लानतान की और तीसरी दफा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ कुरैश की जमात, मैं तुम्हारे पास ज़िबह का हुक्म लेकर आया हूँ। तो ये बात इन पर इस तरह असर कर गई, जो शख्स दावत में सबसे बढ़कर था वो भी बेहतर से बेहतर जुमला पा सकता था। इसके जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को राजी करने की कोशिश में लग गया। इसी तरह इसकी भी तफसील गुजर चुकी है कि जब हालत सजदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर ओझड़ी डाली गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सर उठाने के बाद इस हरकत करने वालों पर बददुआ की तो इनकी हंसी हवा हो गई और इनके अंदर गमो कलक की लहर दौड़ गई। इन्हें यकीन हो गया कि अब हम बच नहीं सकते। ये वाकया भी बयान किया जा चुका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अबू लहब के बेटे उतैबा पर बददुआ की तो इसे यकीन हो गया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बददुआ से बच नहीं सकता। चुनाचे इसने मुल्क शाम के सफर में शेर को देखते ही कहा, वल्लाह मोहम्मद ने मक्के में रहते हुए मुझे कत्ल कर दिया। उबई बिन खलफ का वाकया है कि वो बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को कत्ल की धमकियां दिया करता था। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जवाबन फरमा दिया कि तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा इंशाअल्लाह। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जंगे ओहद के रोज उबई की गर्दन पर नेजा मारा तो अगरचे इससे मामूली खराश आई थी लेकिन उबई बराबर यही कहे जा रहा था कि मोहम्मद ने मुझसे मक्के में कहा था कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, इसलिए अगर वो मुझ पर थूक ही देता तो भी मेरी जान निकल जाती। इसी तरह एक बार हजरत साद बिन माज ने मक्के में उमैया बिन खलफ से कह दिया कि मैंने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मुसलमान तुम्हें कत्ल करेंगे, तो इससे उमैया पर सख्त घबराहट तारी हो गई जो मुसलसल कायम रही। चुनाचे इसने अहद कर लिया कि वो मक्के से बाहर ही नहीं निकलेगा और जब जंगे बदर के मौके पर अबू जहल के इसरार से मजबूर होकर निकलना पड़ा तो इसने मक्के का सबसे तेजवर ऊंट खरीदा ताकि खतरे की अलामत जाहिर होते ही वहां से भाग निकले। इधर जंग में जाने पर अमादा देखकर इसकी बीवी ने भी टोका कि अबू सफवान आपके शेरबी भाई ने जो कुछ कहा था इससे आप भूल गए। अबू सफवान ने जवाब में कहा कि नहीं बल्कि मैं खुदा की कसम इनके साथ थोड़ी ही दूर जाऊंगा। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दुश्मनों का हाल था। बाकी रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सहाबा और रुफका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इनके लिए दीदा और दिल और जान और रूह की हैसियत रखते थे। इनके दिल की गहराइयों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए हुबे सादिक के जज्बात इस तरह उबलते थे जैसे नशेब की तरफ पानी बहता है और जानो दिल इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तरफ खींचते थे जैसे लोहा मकनातीस की तरफ खींचता है। सामईन वक्त की कमी के बायस अपने सिलसिले को यहीं पर बर्खास्त करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली नशिस्त में। जुड़े रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया के साथ।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
0: आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
2: Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6, UCP ki duniya.
3: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
4: Musalmani ke donat ramze din ro. نساید پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یوسیپی

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक टू फैकल्टी। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद कामरान सलीम। डॉक्टर साहब, ऑनगोइंग जो हमारी सारी कन्वर्सेशन चल रही थी, अभी तक हमने जो सारी बात, एक विजन सेट था अपने, एक यूसीबी के अंदर रिसर्च सेंटर बनाए, अब हमने कैन सेट के बारे में जाना, तो मज़ीद अगर इसके अंदर हम डीप सर्च करें तो एक फ्लोट सेट यानी एक फ्लोटिंग सेटेलाइट का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो हमारे जो लिसनर्स हैं जो इस रिसर्च के अंदर या स्पेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं या जो बिगनर्स, उनके लिए थोड़ा बताएं कि फ्लोट सेट होता क्या है।
2: बेसिकली फ्लोट सेट का जो हमारा मिशन था, ये स्टार्ट हुआ था 2021 में, जब हमने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्बर्ग जर्मनी के साथ कोलेब्रेशन में काम करना शुरू किया। यूसीपी ने बिल्कुल। तो वहाँ पे हमारे प्रोफेसर डॉक्टर सर्जियो मोंटेग्रो और वहाँ पर वहाँ पे चेयर अपने सेटेलाइट सिस्टम्स के, तो इनके साथ ड्यूरिंग दिस कोलेब्रेशन हमने फ्लोट सेट के ऊपर काम शुरू किया। और फ्लोट सेट बेसिकली क्या है कि सेटेलाइट को हमने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है कि जिसके थ्रू हम अपने सेटेलाइट को एक फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट में प्लेस करते हैं। जिस तरह स्पेस में आप एक फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट में होता है कि जहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, वो फ्रीली मूव कर रहा होता है, तो ये एक एयर बेरिंग यूनिट के ऊपर आप सेटेलाइट को फ्लोट करवाते हैं, जिस तरह हवा में वो फ्लोट कर रहा है। और अब हम उसको क्या करते हैं कि उसके एटीट्यूड को कंट्रोल करते हैं। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि आपने उसको क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, किस स्पीड पे रोटेट कराना है। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि मिसाल के तौर पे जब आपका स्पेस में सेटेलाइट है तो उसने सन को पॉइंट करना है, ग्राउंड स्टेशन के ऊपर एंटेना को फोकस करना है, तो ये सारे ऑपरेशंस वहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली इस फ्लोट सेट के ऊपर हमारे स्टूडेंट्स काम करते हैं यूसीपी के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। और बेसिकली सेटेलाइट का एटीट्यूड कैसे कंट्रोल करना है, उसके साथ रिडार को कैसे इंटीग्रेट करना है, सोलर पैनल को कैसे डिप्लॉय करना है और सन को कैसे ट्रैक करना है, इन मिशंस के ऊपर काम करते हैं।
1: ये फ्लोटिंग सैटेलाइट करता है। तो डॉक्टर साहब, अगर फ्लोटिंग सैटेलाइट ये सब कर दे, क्यूब सेट का बीच में क्या एक रोल होता है?
2: क्यूब सेट जो बेसिकली होता है, क्यूब सेट हमारे पास जो सैटेलाइट है, ये वो सैटेलाइट है कि जिसको एक्चुअली रियल टाइम में स्पेस के अंदर लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्च कैप्सूल्स होते हैं स्टैंडर्ड साइज के। वो स्टैंडर्ड साइज होता है 10 सेंटीमीटर हाइट, 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर वेथ, यानी कि 10 सेंटीमीटर का क्यूब। तो बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है जो मिनिमम साइज है आप सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये इस क्यूब के ऊपर आप बेसिकली क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमारे जो स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, वो क्या करते हैं, कैन सेट से फिर आगे आते हैं और क्यूब सेट के ऊपर आ जाते हैं। यानी कि जो कैन सेट का सब सिस्टम था, सेंसर्स थे, कैमरा मॉड्यूल था, एंटीना सिस्टम थे, उनको क्यूब सेट यानी कि 10 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर फिट करते हैं।
1: अच्छा,
2: सारे पावर को फिर आप ग्राउंड स्टेशन से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज एडवांस वर्जन ऑफ कैन सेट।
1: डॉक्टर साहब, ये अब जो फ्लोटिंग सैटेलाइट है, क्यूब सैटेलाइट है, इन सब को ऑपरेट करने के लिए सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन भी सेट किया जाता है, उसके बारे में एक आम लिस्नर को थोड़ा सा मजीद आसान अल्फाज के अंदर, ताकि एक आम लिस्नर को भी समझ आ जाए कि सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन असल में होता क्या है।
2: तो सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन में क्या होता है कि आपका जो एक एंड आता है आपका स्पेस सेगमेंट, जो कि स्पेस के अंदर है, जिसको हम क्यूब सेट या कैन सेट कहेंगे, वो स्पेस में चला गया। दूसरा सेगमेंट होता है ग्राउंड सेगमेंट, जो कि ग्राउंड पे है, जो जहाँ पर आप उसको टेलीमीटरी और टेली कमांड लेते हैं, सारे डाटा को रिसीव करते हैं या सेटेलाइट उसको कमांड देते हैं, तो वो हमने पूरा ग्राउंड स्टेशन भी यूसीपी में भी डेवलप किया हुआ है। और इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, सामीन को भी अर्ज करना चाहूँगा, कि रिसेंटली हमने क्या किया है कि हमने नोवा सेटेलाइट के सिग्नल्स को कैप्चर किया। नोवा सेटेलाइट एक सेटेलाइट है जो कि अमेरिका ने लॉन्च किया हुआ है और फ्री डाटा को एक्सेस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स के लिए। तो बेसिकली वहाँ से हमने उसके डाटा को रिसीव किया और पूरे सेंट्रल एशिया की हमने पिक्चर्स को कैप्चर किया है, और ये पिक्चर्स जो हैं फर्दर जो हैं वेदर स्टेशन की पिक्चर्स हैं, जिसको फर्दर आप यूटिलाइज कर सकते हैं फ्यूचर में वेदर की प्रिडिक्शन के लिए, आप एनवायरमेंटल कंट्रोल के लिए या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो इसके लिए आपको जो आप देखते हैं आमतौर पर खबरों का हाल में एंड पे जो मौसम की सूरत हाल आती है, तो ये वही वाला इमेज हमारे स्टूडेंट्स ने अपने ग्राउंड स्टेशन से भी कैप्चर किया।
1: मतलब कि ये तो स्वामी हमारे देख नहीं सकते, मैं इस वक्त इस पेज के ऊपर बकायदा देख रहा हूँ कि हमें आइडिया भी नहीं है कि स्टूडेंट क्या क्या इस टाइम उसके लिए फैसिलिटी क्या क्या कर सकता है।
2: बिल्कुल,
1: कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर, एक इदारे, छोटे से इदारे के अंदर बैठे हुए भी वो इतने एक इंटरनेशनली जो सैटेलाइट्स हैं उनको एक्सेस करके उनसे डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वैसे अगर यूसीपी की नहीं, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बेशक नेशनल लेवल के ऊपर एक स्टूडेंट जो है इंटरनेशनली जो है वो एक्सेस कर रहा है चीज़ों को।
2: अब ये वाली पोस्ट हमारी जो थी, क्या कहते हैं, स्पार्को ने बहुत इसको लाइक किया था, जो हमारा नेशनल स्पेस सेंटर है।
1: अच्छा, अच्छा।
2: उनका स्पेस अवेयरनेस एंड एजुकेशन ड्राइव है, वहाँ पर उधर शेयर की गई है। और इसके तकरीबन एक महीने बाद हमारी उनके साथ, स्पार्को के साथ दो चार मीटिंग हुई और रिजॉल्व के साथ हम इन कॉन्टेक्ट आए। और हम पहली पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने, जिनके स्टूडेंट्स ने अपना रिसीवर डिज़ाइन किया है, अपने एंटीना सिस्टम डिज़ाइन किया है और फिर एक सेटेलाइट इमेज को कैप्चर किया है। और हमारा अभी जो है नेक्स्ट प्रपोजल चल रहा है जिसके अंदर हम फर्दर काम करेंगे इसको एनहेंस करने के लिए।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसा हमने फर्दर आपका काम चल रहा है, तो कुछ जो प्रोजेक्ट्स, अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आप लोगों के चल रहे हैं, तो
2: हाँ जी,
1: उसके बारे में कुछ बताइएगा हमारे सामीन को कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आपके कौन कौन से फिलहाल इस टाइम चल रहे हैं।
2: ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। यूजुअली हमारा फोकस होता है कि हम किसी तरीके से स्टेम एजुकेशन को इंटीग्रेट करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ।
1: अच्छा।
2: और उसमें हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूस वेव रडार्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके डायरेक्शनल कपलर्स हैं, पावर डिवाइडर्स हैं, विवाल्दी एंटीना है और आपके ब्रांच लाइन मिक्सर्स हैं। ये तमाम चीज़ें बिना स्टूडेंट्स हमारे डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर एक रेडार को डेवलप करते हैं। और ऑलमोस्ट हमारा ये 70% तक ये रेडार हमने डेवलप कर लिया हुआ है।
1: अच्छा।
2: कुछ इसमें ऑनगोइंग टास्क चल रहे हैं। फर्दर मोर हमने यहाँ पर डिफरेंट किस्म के एंटीनास डेवलप किए हैं कि जो कि ग्राउंड स्टेशन में यूटिलाइज होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट एंटीनास हैं कि जो कि कैन सेट की रेंज को एक्सटेंड करते हैं। अब इन एंटीनास के अंदर आपके पास यागी एंटीनास हैं, QFH एंटीनास हैं, क्रॉस डाइपोल्स हैं। अब ये एंटीनास क्या करते हैं, इन्हीं एंटीनास की मदद से हमने नोवा सेटेलाइट का सिग्नल कैप्चर किया और दोबारा उसका इमेज जनरेट किया।
1: अच्छा,
2: इसके अलावा हम क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशंस के लिए। कुछ RF कंपोनेंट्स हम डिज़ाइन करते हैं, फिल्टर्स, एंटीना, वेव गाइड्स, एडॉप्टर्स, अरेज, इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो कि बच्चे हमारे एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन का कोर्स पढ़ रहे हैं, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं, वो हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, मैं जो हूँ ना एक स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं ना साइंसेज से बड़ा दूर हमेशा रहा हूँ, मैंने बिजनेस ही ज़्यादा पढ़ा, लेकिन जैसे मैंने आपकी बारे में, आपने मुझे बताया, तो मेरा तो खुद बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मैं ज़रूर इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च भी करूँगा और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि एक नेशनल लेवल के ऊपर एक इदारा इस तरीके से काम कर, जैसे आप जैसे फाउंडर्स और टीचर्स मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब से मज़ीद बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सामने कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए फैकल्टी और FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद कामरान सलीम, UCP स्पेस रिसर्च सेंटर के फाउंडर। डॉक्टर साहब, जैसे आपने सारा अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारा सारा विजन सेट है, हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो डॉक्टर साहब देखा जाए तो कोई अब जो हमारे एक स्टूडेंट है, अब हर चीज़ ऑन फील्ड जाने से पहले कुछ ना कुछ हमें नॉलेज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वर्किंग की ज़रूरत पड़ती है, कोई इस टाइम कोई स्पेस टेक्नोलॉजी कोई कोर्स वगैरह इस टाइम कोई डेवलप है इस टाइम UCP के अंदर?
2: बिल्कुल, हम पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सेमेस्टर में हमने कोर्स ऑफर किया था स्पेस टेक के नाम से, स्पेस टेक्नोलॉजी के नाम से। और ये मेरे ख्याल है ये कोर्स पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराया गया है
1: स्पेस टेक
2: का यूनिवर्सिटीज में।
1: मज़ीद बताइएगा क्या
2: इस कोर्स में बेसिकली क्या करते हैं, स्टूडेंट को A to Z शुरू से लेके बिल्ड करता है वो अपना पूरे का पूरा सेटेलाइट, स्टूडेंट सेटेलाइट जो कैंसेट की मैंने बात की। फर्दर मोर वो उसमें डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट एंटेनास, उसके कम्युनिकेशन को एनहेंस करते हैं और फिर आप स्पेस से डाटा को रिसीव करके उसको प्रोसेस करते हैं कि जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमने इमेज कैप्चर किया और उसको हमने यूटिलाइज किया। तो इस कोर्स के अंदर आप देखेंगे स्पेस टेक का जो कोर्स है इसके अंदर 3 hours a week हम इसको हैंडल करते हैं यूनिवर्सिटी में, और 3 credit hours का कोर्स है और इसमें सेटेलाइट सब सिस्टम, सेटेलाइट कम्युनिकेशन, सेटेलाइट ऑर्बिट्स, लिंक बजट्स, एटीट्यूड कंट्रोल, इवन PCB डिजाइनिंग, PCB मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इमेज प्रोसेसिंग, एंटीना डिज़ाइन, सेटेलाइट ग्राउंड स्टेशन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, इन तमाम चीज़ों को टच किया जाता है।
1: 3 घंटे एक हफ्ते
2: एक हफ्ते
1: टोटल कितने
2: हफ्ते? टोटल हमारे पास 16 weeks होते हैं।
1: 16 weeks
2: तो, और उसके एंड पे हमारा एग्जीबिशन हुआ था जिसके अंदर हम सारे स्टूडेंट्स अपना ये कैंसेट का एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हैं। तो इट इज़ अ वेरी हिट इन UCP एटलीस्ट। और इससे पहले
1: 48 hours का एक पूरा कोर्स
2: है। हाँ जी, तो ये इसके अंदर आप जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को जो टच करते हैं उसमें EZEDA, कैडेंस, GNU रेडियो, CST, आपके पास NSYS, HFSS होता है, सॉलिड वर्क्स होता है जो मैकेनिकल डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं, MATLAB कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग के लिए लेटेक्स को हम यूटिलाइज कराते हैं। तो इट इज़ वेरी मच हैंड्स ऑन कोर्स और स्टेम बेस्ड कोर्स है।
1: अच्छा,
2: और इसको इंशाल्लाह ताला हम अभी फ्यूचर में एक्सटेंड करना चाह रहे हैं कि FOIT और FOST यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी इस कोर्स में आएं और पढ़ें। और सबसे मजे की बात यह है कि इस कोर्स के लिए कोई प्रीरिक्विजिट रिक्वायर्ड नहीं है। एनीवन हु हैज बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ही कैन जॉइन अस और वो आगे अपना उसको आगे हम खुद लेकर चलेंगे, इसको ऐसे डिजाइन किया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब बीच में काफी दफा स्पार्को का जिक्र आया है, यानी एक इंडस्ट्री लिंक्ड इंडस्ट्री के साथ आपने अपने स्टूडेंट्स को लिंक किया हुआ है फील्ड वर्क के लिए। इसके अलावा कोई कोलैबोरेशंस और लिंकेजेस अवेलेबल हैं UCP के या बाहर के स्टूडेंट्स के लिए जो कि वो फील्ड में जाकर काम कर सकें? इसी
2: बिल्कुल हमारी जो कोलैबोरेशन है इस वक्त हमारे पास इंटरनेशनल और नेशनल लेवल दोनों लेवल्स पे हमारी बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन डेवलप हो चुकी हुई है। इंटरनेशनल लेवल पे हम इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ विस्बर के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं, मोरक्को में हम असिस्को के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं, जापान में हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ हमारा इनिशियल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, और तुर्की में हम लोगों के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं। उसके अलावा इस सर्कल को हमने एक्सटेंड किया हुआ है नेशनल लेवल पे भी, और नेशनल लेवल पे हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में कॉन्टैक्ट किया डिफरेंट प्रोफेसर्स को और उन्होंने काफ़ी इसको इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और अब वो भी हमारे साथ मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास स्लम्स में डॉक्टर सबी अनवर साहब हैं, उन्होंने हमारी काफ़ी सपोर्ट किया कि जो चीज़ें हमारे पास UCP में अवेलेबल नहीं है तो वो हमें वहाँ पर अलाउ करते हैं और हम जाके लम्स के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह डॉक्टर हदीद हैं गुलाम इसा खान में, उनके साथ हम इन कॉन्टैक्ट हैं। सजादुर रहमान साहब हैं हमारे पास नमल यूनिवर्सिटी मियांवाली में, हमारे पास अवैस अहमद खान साहब हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में UET लाहौर में, और इन्होंने फ्लोर सेट की जो हमने मेड इन पाकिस्तान मॉडल बनाया काफ़ी हमारी सपोर्ट की, इनकी हेल्प की वजह से हमने उसको दिया। डॉक्टर अब्दुल अजीज़ हैं हमारे पास इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर से, और डॉक्टर वकार हैं जो इस वक्त NESTAP में है, नेशनल एरोस्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में।
1: अच्छा,
2: तो हम इस नेटवर्क को भी आस्ता ग्रो कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में लेके हम इसको काफ़ी आगे तक
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सामीन, जैसा कि डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यकीन करें मैं आपको पहले भी बताया, मैं फिर कहूँगा कि मुझे इस चीज़ के अंदर ना बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था, لیکن آپ کی باتیں سن کے میں اتنا کو موٹیویٹ ہوا ہوں اس ٹائم کہ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں.
2: بالکل,
1: میں ابھی آپ سے ضرور اسپیس ریسرچ سینٹر بھی چکر لگاؤں گا. اور ہمارے سامعین, میں نے تو بہت سیکھا, اور ہمارے سامعین بھی یقیناً جو سن رہے تھے, یہ ایک ایسی فیلڈ ہے, یہ بڑی نیرو ڈاؤن ہے اور بہت کم لوگ لیکن جو ہیں وہ بہت انٹرسٹیڈ ہیں, اور یقیناً وہ جیسے میں خود بھی بہت خوش ہوا ہوں اور بہت موٹیویٹ ہوں, ہمارے سامعین بھی موٹیویٹ ہوئے ہوں گے. لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ ایک وقت تھا جو ہمارا اختتام کو آیا. مجھے ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, ہماری پہلی ملاقات تھی, اور انشاءاللہ تعالی ہم مزید شوز بھی کریں گے اس کے اوپر. سامعین, ہمارے ساتھ مجھے ڈاکٹر محمد کامران سلیم صاحب, فاؤنڈر آف یوسیپی اسپیس ریسرچ سینٹر, اور آپ سن رہے تھے فیکلٹی اور ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ہفتے اسی طرح کسی بہت ہی اچھے ٹاپک کے اوپر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.
2: اللہ حافظ.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: Magical Point 6.
3: जी वेलकम बैक फ्रॉम द म्यूजिकल ब्रेक. हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की और उसने लोकल हमने लोगों ने किस तरह फायदा उठाया, लेकिन हम बैन अलाक्वामी सतह पर भी इस पर बहुत सारा काम हुआ है और कोरोना में बहुत सारा फायदा उठाया गया है. हमने ऐसा एक स्टोर देखा है, हमने एक ऐसा स्टोर के बारे में बहुत सुना है. हम इसके बारे में आपसे थोड़ी सी मालूमात शेयर करते हैं और मुझे लगता है कि कोरोना में उसने बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम किया है. स्टोर के बारे में ये है कि वो स्टोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलता है और उसमें आप दाखिल हो सकते हैं स्टोर में और जो चाहे चीज खरीद सकते हैं, और अपने डेबिट कार्ड को एंटर होते वक्त आप सिर्फ स्वाइप करेंगे, चीजों को खरीदेंगे और बाहर आ जाएंगे. आपको किसी कैशियर से नहीं मिलना पड़ेगा, किसी से सोशल इंटरेक्शन नहीं करना पड़ेगा, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा. तो जो तमाम SOPs और वो तमाम चीजें थी, हमने देखा कि ये स्टोर उन पर बहुत अच्छे से पूरा उतर रहा है. उसके अलावा चीजों को हाथ लगा के उनको सैनिटाइज करना और ये तमाम चीजें, तो ये स्टोर कोरोना के टाइम में बहुत मौजूद साबित हुआ. अब होता क्या है, स्टोर की वर्किंग क्या है, हम उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं. जब एक कस्टमर स्टोर में दाखिल होता है तो उसका क्रेडिट कार्ड या उसकी इन्फॉर्मेशन वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्वाइप कर देता है और स्टोर के अंदर दाखिल हो जाता है. उसके बाद वो जो भी चीज उठाता है उसके पीछे सेंसर्स लगे हुए हैं, कंप्यूटर को पता लग जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू. वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसने ये चीज कितनी कीमत की उठाई है और कितनी क्वांटिटी की उठाई है. अगर वो चीज वापस रख दे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल परेशानी नहीं है, वो चीज वापस भी रख सकता है. एट द एंड जब वो तमाम शॉपिंग कंप्लीट कर लेता है तो बगैर किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के वो अगर स्टोर से बाहर निकल जाता है तो उसके पैसे वो डिडक्ट हो जाते हैं. और अगर वो स्टोर से बाहर निकलने से पहले वो चीज को वापस रख देता है और उसका इरादा बदल जाता है, जैसे हम देखते हैं कि हम फैमिली के साथ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें रखते हैं और बहुत सारी चीजें वापस रख देते हैं, उसके बाद हमारा इरादा बदल जाता है. और ये तमाम चीजें तो मैंने देखा है कि कोरोना ने इस कोरोना के इस तमाम एनवायरनमेंट में स्टोर ने बहुत मौजू अपना एक किरदार अदा किया है. इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूं कि कुछ ओल्ड स्कूल लोग होते हैं जो कि इतनी टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते या इतना पसंद नहीं करते. तो कुछ अरसे के बाद जब कोरोना वाले मामलात तमाम हल हुए और दुनिया हमने देखा कि खुलने की तरफ आई, तो इसमें अब कैशियर्स भी बिठा दिए गए हैं ताकि वो लोग जो कि ओल्ड स्कूल तरीके से और कैशियर्स के थ्रू चीज़ खरीदना चाहते हैं उनको भी कैटर किया जा सके और उनकी भी नीड्स को पूरा किया जा सके. जी आजम
4: जी, बिल्कुल नबील भाई, जिस तरीके से आपने बात की स्टोर की, तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से फ्यूचरिस्टिक स्टोर है. जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तरीके से इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो कैमराज इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हुए हैं, इसकी मदद से ही ये सारा प्रोसेस हो रहा है. जो कि आप कोई भी प्रोडक्ट उठाते हो, आप इजीली किसी आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली जाके कोई भी चीज़ उठा के उसको इस्तेमाल कर इजीली कर सकते हो. ऑटोमेटिकली आपके फोन में जो ऐप होगी उसमें डिटेक्ट होते जाएंगे पैसे. तो नबील भाई, आपने जिस तरीके से जिक्र किया इस सारे प्रोसेस के बारे में बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया, कंप्यूटर्स के बारे में बताया, कैमरास के बारे में बताया जो कि इस स्टोर में इंस्टॉल किए गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर वो एक कैमरा एक इंसान की जगह ले रहा है, हर वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी, वो कंप्यूटर जो इस्तेमाल हो रहा है उसके पीछे एक इंसान है जिसकी जगह उसने ली. और सिर्फ ना कि एक इंसान बल्कि एक पूरी इंसान की एक पूरा बैकग्राउंड है और उसके साथ मुंसलिक हुए हुए 3 से 4 उसकी फैमिली मेंबर लोग भी हैं. तो आपका नहीं ख्याल कि इस तरह की टेक्नोलॉजी जब पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है तो बहुत से जॉब्स में और बहुत से लोगों के लिए भी मसले का सामना करना पड़ रहा है उनको?
3: ये सवाल जो है वो बैन अलाक्वामी सतह पर ग्लोबली उठाया जा रहा है और लोग बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज को लेके. अगर हम देखें, हमने एक स्टोर की बात की तो इसमें एक कैशियर की नौकरी गई. वो तमाम जो रैक्स पर खड़े हुए लोग होते हैं जो आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वो तमाम लोगों की नौकरी गई. और अगर एक शख्स की नौकरी जाती है तो वो सिर्फ एक शख्स की नौकरी नहीं होती, उस पर पूरा घर चल रहा होता है, उसके साथ मुंसलिक 3 से 4 लोग होते हैं. तो ये सवाल बहुत वैलिड है कि आने वाले वक्तों में अगर तमाम चीज़ों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर और ये टेक्नोलॉजी ही ले लेगी तो इंसान कहाँ से कमाएगा और इंसान कैसा गुजारा करेगा. लेकिन मुझे लगता है कि हमें हमेशा से भरा हुआ आधा कप देखना चाहिए, भरा हुआ आधा गिलास देखना चाहिए और थोड़ा सा पुरुमीद रहना चाहिए. इस पर इसके क्या नतीज निकलेंगे और नौकरियों के हवाले से क्या मसाइल पेश आएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी की वजह से अगर जॉब्स खाली हुई हैं और जॉब्स की जगह कम हुई है, तो बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई हैं। ऐसे बहुत से स्टोर्स हैं जहाँ पर वर्चुअल असिस्टेंट्स की जरूरत होती है, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जहाँ पर आपको सोशल मीडिया हैंडलर्स की जरूरत होती है, डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत होती है, और सोशल मीडिया का जितना यूज है और जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं वहां पर आपको स्टाफ चाहिए होता है। तो अगर पुराने रास्ते बंद हुए हैं तो नए बहुत से रास्ते खुले भी हैं। तो मेरे ख्याल से हमें पुरउम्मीद रहना चाहिए और टेक्नोलॉजी से हमें नुकसान की बजाय फायदा ज्यादा होगा।
4: जी बिल्कुल, इस तरीके से आपने बताया कि पुराने रास्ते बंद हुए और नए रास्ते खुले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की जिंदगी की खूबसूरती इसी में ही है कि जब जहां पे वो अडॉप्टेबिलिटी अपने अंदर पैदा करता है, माहौल के लिहाज से अपने आप को ढालता है, जिस तरीके का वक्त चल रहा होता है उसी वक्त के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है। तो मेरा तो यह ख्याल है कि ये एक ऐसा सवाल है जो मैंने आपसे भी किया था, इसका जवाब वक्त से बेहतर और कोई चीज नहीं दे सकती। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ही पता चलेगा कि इसका जो भी है ऊंट किस करवट बैठता है। जी ये था जी आज का हमारा शो। उम्मीद करता हूं आपको आज के हमारे शो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप बहुत लुत्फानंदोज भी हुए होंगे। अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पे यूसीपी की दुनिया में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया, FM 92.6।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। यूसीपी की दुनिया
2: Fasten your seatbelt.

0: मौसी की चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस, देन स्टे ट्यून्ड 92.6

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: Ek naya andaaz.
2: Ek nayi soch.
1: Ek nayi pehchaan.
2: Ek nayi lagan.
1: UCP में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: यूसीपी की दुनिया।
2: यूसीपी की दुनिया। आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।